0: अपना सफीना उभरेगा, तूफान का जिगर थर्राएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। ए वादिय नजद के राह जनो, रिफरिंग टू द पीपल हु हैव कंट्रोल ऑफ काबा इन देयर हैंड्स, ही सेज ए वादिय नजद के राह जनो, क्यों हमको आंख दिखाते हो, जो भीख में मांग के लाए हो उस ताकत पर इतराते हो, मेहमा का खून बहाते हो, ईमा का नक्श मिटाते हो, खाते हो पयंबर का सदका और उम्मत पर घुर्राते हो, एक रोज बुतों की तरह तुम्हें काबे से निकाला जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। इट इज इनएविटेबल दैट इट इज गोइंग टू हैपन। ही रोट दिस एट द टाइम व्हेन सलमान रुश्दी वाज इन हाइडिंग, he was being protected. That's the time when he wrote this particular poetry. He says, Europe ki zameen tharrati hai, Rushdi ki hifazat kya hogi? He says, Europe ki zameen tharrati hai, Rushdi ki hifazat kya hogi? Fatwe se to dunya hilne lagi, talwar ki taqat kya hogi? He says, fatwe se to dunya hilne lagi, तलवार की ताकत क्या होगी, नायब की जब इतनी हैबत है आका की जलालत क्या होगी, जो जोर खुदा का वारिस है कौन उससे भला टकराएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। दिस इज गोइंग टू हैपन, बट यू एंड आई, इफ वी वॉन्ट टू मेक दिस ईद अ रेलेवेंट ईद टू यू एंड आई एंड टू बी एबल टू प्लीज जहरा, देन it is our responsibility to make sure that we follow the instructions to become individuals that are worth to be in the army of the 12th imam Hazrat Hujjah salawatullahi wa salamu alayhi. Allahumma inna narghabu ilayka fi dawlatin karima tu'izzu biha al-islam wa ahla wa tudhillu biha an-nifaq wa ahla wa taj'aluna fiha min ad-du'ati ila ta'atik والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم عجل لوليك الفرج. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of the 12th Imam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this Eid an occasion for you and I to learn from and grow through it so that we can please the heart of Zahra. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we are amongst the Ansar and the A'wan of the 12th Imam alayhi salam. May I request you to purify the atmosphere and give fragrance to your lips by reciting three loud salawats ala Muhammad wa Ali Muhammad.
1: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired, and loved. Welcome to Al Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence, and compassion. Give your child a place to belong, learn, and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.

0: सलामुन अलैकुम नाज़रीन। 5 बरस का एक बच्चा जो हर बात का जवाब कुरान मजीद से देता है, जी हाँ, सिर्फ 5 बरस की उम्र में जो भी सवाल पूछा गया जवाब कुरान मजीद की आयात से। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, आप खुद देख सकते हैं।
1: आज क्या खास बात है?
2: ये बिल्कुल मोहम्मद हुसैन तबातबाई की तरह है।
1: मोहम्मद हुसैन है तबातबाई?
3: खुद तबातबाई ही है।
1: यानी हम लोग पिछले ज़माने में चले गए?
4: नहीं, डुप्लीकेट है।
3: डुप्लीकेट नहीं, खुद तबातबाई ही है। मुझे नहीं मालूम, आप लोग बताएं कि
2: मारे भाई अल्लामा तबातबाई साहिब तफ़सीर अल मीज़ान के कतन नहीं है।
4: ये अंदाज़, आबा पहनने का तरीक़ा, ये सब कुछ, उनके बैठने का अंदाज़, उनकी अदाएँ बहुत मिलती जुलती हैं।
3: हसनैन, आपको याद है?
5: जी हाँ, उस वक्त मैं खुम में ही रहता था।
3: अच्छा, उस ज़माने में आप खुम में रहते थे?
5: जी जी, बहुत मुशाबे
1: है। ठीक है, इनका क्या नाम है? खुद मोहम्मद हुसैन तो नहीं है ये?
3: आप खुद अपना तारुफ पेश कर सकते हैं।
6: सैयद मोहम्मद मोहसिन।
3: सैयद मोहम्मद मोहसिन ने माजी के कुछ यादें ताज़ा करना पसंद करेंगे?
5: ठीक है, चलिए।
3: ठीक है, चलिए।
1: ये उन्हीं यादगार अय्याम की गुफ्तगू।

0: ने बच्चों को थोड़ी आज़ादी दे रखी है ताकि वो खुद क्लासिकल अंदाज में आगे बढ़े। उनके लिए कोई मखसूस प्रोग्राम तय नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा हिफ्ज कर रहे हैं। उनकी बहन ने अभी 30वां पारा हिफ्ज किया है और इन्हें भी 30वें पारे का एक दहाई हिस्सा हिफ्ज है।
1: माशाल्लाह बहुत उम्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: दादा हाफिज़े कुल कुरान,
1: दादा हाफिज़े कुरान, वालिद साहब 5 बरस की उम्र में हाफिज़े कुल कुरान, लेकिन बच्चों पर दबाव नहीं बनाया कि तुम भी हिफ्ज ज़रूर करो। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम।
3: अकीदत बात है भाई, खुश आमद,
0: सलामत रहें। शुक्रिया,
3: मैं आपका अकीदतमंद हूँ।
0: शुक्रिया,
3: मुझे बखूबी याद है इनकी वजह से न जाने कितने लोगों में कुरान करीम के तई रुझान पैदा हुआ, लोग कुरान करीम से जुड़े। उसके अलावा जनाब रसालत, इनका चेहरा बहुत ज़्यादा नूरानी और दिलकश था, इनकी बहुत सी वीडियोस शेयर होती थी इस दौरान, जिनमें इनके वालिद गिरामी इनके साथ खेलते हुए नज़र आते थे। आका तबा तबाई, मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, मेरी ख्वाहिश है इसे पूरा कर दीजिए।
0: बिस्मिल्लाह फरमाएं।
3: मैं जिस बारे में कहूँ आप उससे मुतालिक आयत की तिलावत कीजिए।
0: बिस्मिल्लाह।
3: जनाब रसालत बुज़री, हसनैन अल हुलू,
4: कुल हल थरा बसुना बलो अहला अहला कुल,
5: अल्लाहुम्मा सल्ल अला
3: कासमियान
4: व कसमहुम इन्नी,
5: अल्लाहुम्मा सल्ल अला
3: रिजवान दरवेश
4: व रिजवान मिन अल्लाह अकबर,
3: माशाल्लाह। मैं भी एक आयत की तिलावत करता हूं।
0: बिस्मिल्लाह।
6: अच्छा एवन अल हामिदून, अल हामिदून,
3: अल्लाहुम्मा सल्ल अला।
0: एक बात याद आ गई कि मैं जब दूसरी मर्तबा हज के लिए गया तो मैं अपने वालिद साहब के साथ मदीने में था। एक बरतानवी शख्स हज के लिए आया था, वो कहने लगा कि आप आयात कुरानी से इस्तेफादा करते हैं। मैंने कहा जी हाँ। ईद में कहने लगा कुरान मजीद में मेरा नाम कहाँ जिक्र हुआ है। मैंने कहा आप अपना नाम बताएं ताकि मैं देखूँ कि कहीं कुरान में आपका नाम जिक्र हुआ है या नहीं। कहने लगा मेरा नाम कूक है। मैंने कहा आपका नाम कुरान में मौजूद है। वो बहुत खुश हुआ। अलबत्ता मैंने समझाया कि यह आपका नाम नहीं, फेल और ज़मीर मिलकर इत्तेफाकिया ये कलमा बन गया है।
2: जनाब मोहम्मद हुसैन, उस वक्त जब तशय्यो के ख़िलाफ़ एक माहौल बना हुआ था तब बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि एक 5 बरस का शिया बच्चा इस तरह कुरान से गुफ्तगू करे।
7: जी, शियो के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा किया गया था।
2: जी जी, बरसों से सुनते चले आए कि शिया जानते ही नहीं,
8: या शियों का कुरान दूसरा
2: है क्या, या वो कुरान को मानते ही नहीं। अनवाओ अकसाम के सवालात मोहम्मद हुसैन से किए गए। एक मुतअस्सिब शख्स गुस्से में खड़ा हुआ, उसके होलिये से मुशख्खस था कि वो गुस्से के आलम में है। जानता था कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद हुसैन है और कुरान मजीद में मोहम्मद हुसैन नहीं है, है या नहीं?
0: मोहम्मद तो है,
2: मोहम्मद हुसैन मुकम्मल
0: नहीं, कुरान में एक साथ नहीं है।
2: उसने सवाल किया कि आपका नाम कुरान में कहाँ है। वाकई बहुत नाइंसाफ़ी की। मसलन कोई भी सवाल कर लेता, मसलन यही कि तुम कितने बरस के हो, तो कहते भैया कौन हो, 5 साल। लेकिन उसने कहा तुम्हारा नाम कुरान में कहाँ है। वो जो भी गलत इरादा और बुरी नीयत रखता हो या इस बच्चे की तहकीर करना चाहता था, मोहम्मद हुसैन को 2 सेकंड भी नहीं लगे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था।
7: क्या आप उस जलसे में मौजूद थे?
2: जी, मोहम्मद हुसैन ने कहा
9: इन्नी अब्दुल्लाह।
2: मोहम्मद हुसैन उस वक्त 5 बरस के थे, शायद खुद उन्हें भी याद ना हो। वो शख्स अपने सवाल और ये कि इस बच्चे को नीचा दिखाना चाहता था अपने किए पर सख्त नादिम था और अपने रुखसानों पर हाथ मारने के बाद मोहम्मद हुसैन के हाथों का बोसा लेने लगा और उनके आगे खम हो गया।
3: जनाब मोहम्मद हुसैन, कुरान में कोई मज़ाही आयत भी है?
0: जी हाँ, मज़ाही आयत भी हैं, आप यकीनन उससे वाकिफ़ होंगे। बफ़ज़ल इलाही मैं कभी कभी संजीदा माहौल में भी, जैसा कि उस्ताद अबुल कासिम ने इशारा किया, खुदा के फजलो करम से मैं संजीदा माहौल में भी माहौल को खुशगवार और मिजाहिया बनाने के लिए कुछ ऐसी आयात की तिलावत करता था कि माहौल खुशगवार हो जाता था। मक्का मुकर्रमा का जो आपने ज़िक्र किया, कुछ यादें हैं, अलबत्ता वाकयात बहुत हैं। उनमें से एक ये है, वही हज तमत्तो के अरकान की अदायगी के मौके पर दो भाई आए जो तहलीक और हल्क के फ़राइज को अंजाम देकर आए थे और मुंडे थे। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उनके सर चमचमा रहे थे। उनमें से एक दुआ और सलाम के बाद हमारे पहलू में बैठ गया। ये बैठा ही था कि उसका भाई भी, जो उसी की तरह सर मुंडा कर आया था, आकर बैठ गया। मैंने दोनों को देखा और फौरन ये आयत
4: पढ़ी,
0: जबकि नूरुन अला नूर अल्लाह ताला के सिलसिले में है, कोई रब्त नहीं था, लेकिन चूंकि दोनों के सर चमक रहे थे तो मिजाहन इस आयत की तिलावत करते। इसी तरह का एक और वाकया याद आ गया कि हम एक इमाम जुमा

0: का ताल्लुक दिल से, और फिर एक जहन है, अफकार, सोच, फिक्र। तो अब आम तौर से जब इंसान के लिए अल्लाह ने एक रूहानी ज़रूरियात को भेजा है, जैसे अल्लाह बज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ज़िक्र यानी अक्सर जगहों पर कुरान में आया, तो याद खुदा और याद में नमाज को कई जगहों पर याद कहा गया है, याद परवरदिगार। तो इत्मीनान जो हासिल होता है वो नमाज से।
1: सही।
0: इसी तरह से इंसान के बहुत से, एक तो फिक्री और जहनी है, और उसी के अंदर फिर आ जाता है डिप्रेशन या स्ट्रेस और परेशानी, ऐसी बहुत सी कैफियत इंसान पे तारी होती हैं खुशी और गम की। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो अल्लाह सुबहान तआला ने इंसान में एक ताकत रखी है, कुव्वत फिक्रिया, जिसे कहा जाए कि फैकल्टी ऑफ थिंकिंग। तब ये सोचने की सलाहियत इंसान में,
1: सही।
0: तो अब सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना ओवर थिंकिंग,
1: जी जी जी,
0: जरूरत से ज्यादा किसी चीज पे सोचने से फिर आप परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो सोचना भी जरूरी, और बिल्कुल लावाली होना, लापरवाही बरतना, वो भी गलत है। तो एक है कि लापरवाह इंसान, उसकी भी मजम्मत की गई है, जरूरत से ज्यादा सोचना, उसको भी पसंद नहीं किया गया, किसी भी शय पे ज्यादा यानी बताता यानी परेशान होने लगना, मेरा मुस्तकबिल का क्या होगा, मेरे जो, तो ये परेशानी मिले जाता है इंसान। और एक होता है कि इंसान बैलेंस रहे, ना ही लापरवाही हो और ना ही इंसान गहरी परेशानी में मुब्तला हो जाए अपने उसे। तो अब ये बैलेंस रखना कैसे होता है, यानी शरीयत ने या इस्लाम ने इसकी तरफ रग़बत दिलाई है कि इंसान अपने उस अक्ल को, अपने उस सोचने के तर्ज तफक्कुर को हमेशा जिंदा भी रखे, सोचे, समझे। और अहदीस में आया है कि वो मोमिन नहीं है जो इस बात की परवाह ना करे कि लोग उसके मुताबिक क्या कहें और क्या, यानी सोचना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि इंसान जरूरत से ज्यादा उस मामले में सोच के अपने आप को परेशान कर ले।
1: सही।
0: नंबर दो, कुछ बातों का चीजें, हालात इंसान के लिए ऐसे बन जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी उन्हें सोचता। बाद का इंसान ने कुछ इस कस्म के हालात से गुजर रहा होता है जिंदगी के अंदर, डिप्रेशन से, या उसके साथ कुछ ऐसे हो जाती हैं चीज़ें, किसी की मौत हो गई, या खुदा ना करे कुछ और ऐसा हो गया, फाइनेंशियल हालात ख़राब हो गए, या बच्चा फेल हो गया, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसमें ना चाहते हुए भी वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है
1: जी,
0: जिसकी वजह से फिर वो परेशानी या डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। इन तमाम सूरत हाल के अंदर सबसे पहली चीज़, कुछ कहे गए हैं जो डॉक्टर्स हैं, एक तो आराम, तो इंसान का सोना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है। नंबर दो, खाना पीना अपना बैलेंस रखे। क्या होता है आमतौर से परेशानी के अंदर, इंसान या खाना पीना बंद कर देता है
1: या
0: ज़्यादा ओवर ईटिंग शुरू कर
1: देता है,
0: तो इंसान ज़्यादा खाने लगता है, तो दो उसका बैलेंस रखे। नंबर तीन, वर्जिश। वर्जिश जो है सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग होता है, हेल्थी बॉडी हैज़ अ हेल्थी माइंड। तो वर्जिश की तरकीब दिलाई गई कि आप जरूर चलें फिरें, चलना फिरना इसको बंद ना करें। नंबर चार, खुद बाहर निकलें, यानी सूरज की रोशनी, सूरज को बहुत बड़ा डॉक्टर करार दिया गया
1: जी।
0: नंबर पांच, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, कुछ आपके अपने ही बाज़ुकात अजीज रिश्तेदार या दोस्त होते हैं जो आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं,
1: बाइस परेशानी बनते हैं,
0: बाइस परेशानी बनते हैं, तो यानी वो आपको ऐसी सी बातें कहते हैं, आपको कह देते हैं, यानी कि आपका जहन मुशव्विश हो जाता है और आपके जहन के अंदर परेशानी और आपको डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। बहुत से जैसे सिंपल सी मिसाल दूं कि बाज़ुकात आप किसी के साथ एक घंटा बैठेंगे तो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी खत्म कर देगा, और बाज़ लोगों के साथ 10 मिनट बैठेंगे और आपके अंदर वो पूरी की पूरी जान भर देगा। तो एनर्जी या कह लें ताकत आपके जहनी, यानी आपको बिल्कुल, आप मुतासर हुए होंगे, परेशान होंगे, लेकिन उनके साथ बैठेंगे तो आपको, तो अच्छी सोहबत बहुत अहम है। ये जो कहा जाता है अंग्रेजी में, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये हज़रत अली सलाम की हदीस से लिया गया। तो मौला फरमाते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ।
1: सही।
0: और अच्छा दोस्त जो है वो जिंदगी का महासल है, और वो कैसे होता है उससे पता चलता है। तो ये सारी एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो परेशानी इंसान अपने आप को कोशिश करे कि सवार ना होने दे चीज़ों को, लेकिन बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, जैसे सबसे ज़्यादा डिप्रेस

0: तीन चीजें क्या होती हैं। नंबर एक तलाक, इल्म नफ्सियात में कहा जाता है पहली चीज तलाक, यानी रिलेशनशिप का टूटना। ये इंसान जवानी से इन चीजों में मुबतला होना शुरू हो जाता है, रिश्ता चाहता है नहीं चाहता किसी से रिलेशनशिप, तो वहां से उसका फौरन जहनी तौर पे टूट फूट शुरू हो जाती है। नंबर दो, हिजरत मूवमेंट, यानी आपका अपना घर छोड़ के जाना, कहीं वतन छोड़ना, घर छोड़ना, ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता है। नंबर तीन, किसी की जुदाई, किसी की मौत या किसी के चले जाना, छोड़ के चले जाना, ये सब चीजें डिप्रेसिंग होती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें जिनको डिप्रेसिंग कहा गया है। तो कई मरतबा इंसान अपने करियर को लेके, अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपने फाइनेंशियल हालात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो उसमें तो अब मेहनत करते रहना और अपने आप को मोटिवेटेड रखना और मायूसी का शिकार ना होना, ये सब चीजें वो हैं कि जो आपको बाज़ औक़ात खुद से नहीं हो पा रही होती हैं। आपको किसी की मदद की जरूरत होती है जो आपको इनकरेज करे, आपको हौसला दिलाए और आपको उन कैफियात से बाहर निकाले। मैं ज्यादा बोल गया हूँ, तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें, इनको बहस किया गया है, और यानी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी के अंदर इन चीजों का सबब बनती हैं।
1: अच्छा किबला साहब, आप हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके अफकार से कुछ ऐसी मिसालें दे सकते हैं जो मेंटल हेल्थ के मसले को ज़रा थोड़ा सा वाजे करती हैं, या उन्होंने कोई इस तरह के नुस्खे दिए हों जो लोगों के लिए मुफीद हो।
0: हाँ, एक तो खुद कुरान करीम का अला बज़िक्र अल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, यानी याद खुदा, जब आप अल्लाह को, अहले बैत को, जो आठवें वाले साहब ने कहा कि इन कुंता बाकियन अला शैइन फ़बकिलिल हुसैन, ये अपने शबीब रैयान अपने शबीब की मुस्तनद तरीन रिवायत है कि अगर कभी भी रोने का जी कर रहा हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रो। तो यानी क्या करें कि अपने आप को डाइवर्ट कर लें, यानी अपने परेशानी पर ना रो बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम। तीसरे कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना क्यों हो गए थे, उनकी बिनाई क्यों चली गई, क्योंकि वो घुट घुट के रोते थे। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, आप घुट यानी अपने आप को घुटना बंद कर दें बल्कि आप अपना रोएं, गिरिया करें। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में डिस्करेज किया गया कि नहीं, आप ऊंचे आवाज से नहीं रोएं, किसी को बताएं नहीं, किसी के सामने नहीं रोएं, तो हमारे यहाँ जो मजालिस बरपा होती हैं, शब जुमा, दुआ दुआ पढ़ो और रो। तो अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते, घर में बैठ के रो सकते हैं, आपको दुआ पढ़ते में रोएं आप अहले बैत अलैहिस्सलाम। तो अब वो जो गिरिया है, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इनक्रेज किया है कि आप रोएं, और खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, यानी अगर आप देखें तो मौला अली अलैहिस्सलाम के जुमले मिलते हैं, तो ये जो अहले बैत अलैहिस्सलाम भी इफेक्ट हो रहे हैं, यानी जो मसाइब से गुजर रहे हैं तो इससे इफेक्ट हो रहे हैं,
1: इमोशनल फीलिंग, यानी
0: इमोशनल फीलिंग है।
1: कि
0: जैसे अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सहरा से, क्या है सहरा, ये ना महसूस करना कि तू तन्हा है, सहरा में कोई नहीं जाता, मेरे दिल को आके देख मैं कितना तन्हा। फिर कुएं में जाके कहते हैं कुएं ये ना सोचना तुम कितने गहरे हो, मेरे दिल को देखो मैं कितना गहरा हूँ।
1: क्या खूबसूरत बात है। ऐसे
0: हाँ, तो अब ये
1: और
0: यानी
1: क्या।
0: मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि यानी मैं उससे गुजर रहा हूँ उस फेज से, कि यानी जिसका मैं डिप्रेशन नहीं कहना चाहता, यानी मैं उस टॉर्चर से, मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा हूँ कि मेरी बीवी के साथ जुल्म हुआ, मेरे बच्चे यतीमों की तरह से रह रहे हैं, मेरे रसूल खुदा की मीरास मेरे से सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन मैं फिर भी उसमें कोप कर रहा हूँ। तो यानी और जितने मसाइब उन पे आए, जितना उनका रुतबा था, अगर देखा जाए तो अगर आम आदमी पे इतने तो वो तो डिप्रेशन से मर जाए। तो आपने फरमाया कि इतने किसी पे मसाइब नहीं आ सकते, और फिर आप फरमाते हैं एक बड़ा अजीब गरीब जुमला, मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौला फरमाते हैं मैंने इतना सब्र किया है कि अब सब्र मुझसे कहता है याली और कितना सब्र कीजिएगा, बहुत बड़ा जुमला। तो इसका मतलब है कि यानी कोप करना सिखा रहे हैं। दूसरी मिसाल मिलती है खुद इमाम हसन मुशतबा अलैहिस्सलाम की, जो आप फरमाते हैं कि मेरे पे क्या कुछ तोहमतें नहीं लगाई गई, ये शादियां करता है, ये है, ये वो। तो अब अखला यानी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, कहते हैं हजरत यूसुफ, हाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हजरत मरियम की, और आए महल बैत मौला हसन अलैहिस्सलाम की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। तो मौला हसन मुशतबा अलैहिस्सलाम लड़े नहीं, तकरीरें नहीं की, बोले जानते थे कि मुआविया मेरे खिलाफ कर, लेकिन आप उसको यानी पी जाते थे, लेकिन गुजर तो रहे थे उससे कि नहीं गुजर रहे थे। और मैं एक और बात कहूंगा, बहुत कहते हैं वो तो मासूम थे, भाई मासूम हमसे ज्यादा हसास होते हैं, हमसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी गुनाहों की वजह से हमारी जो वो नरमी होती है, हम सख्त दिल हो चुके होते हैं। मासूमीन अलैहिस्सलाम क्योंकि पाकीज़ा होते हैं और वो गुनाहों से बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनकी वो नरमी खत्म

0: में लोग मुझे नापसंदीदगी से नहीं देखते, बल्कि मुझे कोई चाहता भी है, मुझसे कोई मोहब्बत भी करता है। यहाँ तक एक माहिर नफ्सियात ने कहा है कि अगर किसी को इतना पॉजिटिव कहा जाए, यानी ये सिर्फ मिसाल है कि किसी का कद छोटा है, उसको मुसलसल सारे लोग कहने लगे आपका कद बढ़ रहा है, आपका कद बढ़ रहा है, तो उसका कद बढ़ने लगेगा।
1: अच्छा
0: यानी वो कहते हैं कि इस हद, यानी ये तो सिर्फ मिसाल है, उसने कहा कि इस हद तक पॉजिटिव गुफ्तगू का असर होता है बच्चे को। ना कर तुम तो दहशतगर्दी बनोगे, तुम तो हमेशा बहन भाइयों को मार दे,
1: तो
0: मनफी बात ना करें, वो मुस्बत बात करें। मन अगर करें तुम तो इतने अच्छे, तुमने क्यों बहन भाइयों को मारा, यानी उसमें भी पॉजिटिव बात, डांटने में भी पॉजिटिव बात करें।
1: जिस तरीके से आप उसको रिइंफोर्स करें वो भी पॉजिटिव हो
0: हाँ, यानी उसका असर होता
1: जी।
0: है, बे इंतहा असर होता है। तो इसलिए यानी आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, ये कहना नहीं तुम तो ठीक नहीं हो सकते, यानी वो ठीक हो भी रहा हो तो ठीक नहीं होगा, चाहे जिस्मानी बीमारी हो चाहे नफसियाती बीमारी हो। बार बार ये कहना कि आप ठीक हो जाएंगे, आपका जहन ठीक हो जाएगा, आप रिकवर कर जाएंगे, ये जो पॉजिटिव बिलीव होता है कि बहुत से लोग रिकवर कर जाते हैं बीमारी से, बहुत से नहीं कर पाते, ये अपनी अपनी बीमारी से हार जाते हैं, बीमारी के मुकाबला करने से हार चुके होते हैं। मुकाबला करने वाले कौन होते हैं, वो कहते हैं उनको जिनको ये खुद स्ट्रांग माइंड होता है, या उनको लोग इनकरेज कर रहे होते हैं।
1: अच्छा किबला, आपने शुरू में अभी कहा कि इसका एक सलूशन ये है कि बात की जाए, लेकिन ये इस तरह का हमारे एक माहौल सा बना हुआ है हमारी कम्युनिटीज में कि इसको मायूब समझा जाता है, और वो समझते हैं कि बात करने से जो है आपकी एक तहकीर सी होगी, या आपकी पोजीशन कम हो जाएगी, या आपको गलत नज़रिए से देखा जाएगा, या कहेंगे कि मिसाल के तौर पे उस पर तो जिन आ गया, मिसाल के तौर पे, या कुछ इस तरह के मसाइल भी हैं कि कुछ लोग मानने को ही नहीं तैयार है कि वो एक मुश्किल का दो चार है। तो इन इन बारों में आप क्या कहेंगे कि इसके क्या सलूशन है?
0: देखें, पहली बात यह है कि हमारे मुआशरे में मायूब है, वो कहते हैं मेंटल हेल्थ, यानी इसका मतलब डिप्रेशन, पागल है, गलत है, यानी बहुत से लोग परेशानी का या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन वो पागल नहीं होते, और इसको पागलपना कहना ये खुद जुल्म है। दूसरी बात यह है कि 80% से ज़्यादा जो केस होते हैं ना कि ये जिन है, इन पर जादू हो गया है, वो झूठ होते हैं। मैं नहीं कहता कि जादू नहीं होता, मैं ये नहीं कहता कि जिन नहीं होते, लेकिन 80% से ज़्यादा केस जो जादू और जो जिन वगैरह के होते हैं वो झूठ होते हैं, बल्कि शायद 90% से ज़्यादा झूठ होते हैं। और कारोबारी लोग जो हैं वो कहते हैं हाँ आप पे जादू है, मैं उतार दूंगा, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं तो उनको कारोबार इसी पे चल रहा है। कई लोग जी यानी उन्होंने यानी कारोबार कमर्शियल कर दिया है उसको, जगह जगह पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे वो लगे हुए हैं कि फलां बाबा उनसे आप इलाज करा लें जादू का, यानी लोगों को नफसियाती मरीज बना दिया है। लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं भाई, हसद यानी वमिन शर हासिदिन इज़ा हसद, हसद अलग चीज़ है, उसका भी असरात होते हैं, मनफी असरात होते हैं,
1: जी।
0: नजर है, तो बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन हर एक को जादू का या उसका असर नाम दे देना ये भी सही नहीं है। अलबत्ता हमारे माशरे के अंदर बहुत से लोग इन चीज़ों में मुबतला भी हैं जो गुनाह ने कबीरा में है, तो एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई इन चीज़ों से गुजर रहा हो तो जो कुछ भी हो, एक माहिर नफसियात, हत्ता जो सुनने वाले होते हैं, बरतानिया में मुझे एक साहब ने बताया, एक डॉक्टर ने बताया कि सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ साइकेट्रिस्ट की होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, यानी क्योंकि वो लोगों के मसाइल सुन सुन के खुद आगे नींद पागल हो चुके होते हैं, यानी उनके ऊपर नफसियाती असर इतना ज़्यादा हो जाता है। क्यों, सुबह से रात तक लोगों के रोना गिरिया परेशानी और उनके मसाइल को सुन सुन के इंसान के अपने दिल पे और अपने जहन पे, अपनी रूह पे इतना
1: दबाव
0: मनफी असर होता है,
1: होता
0: दबाव होता है।
1: है, बिल्कुल
0: तो इसलिए उसके लिए उनको छुट्टियों की और आराम की ज़रूरत होती है कि जहाँ पे वो खुद अपने आप की इसलाह कर सकें और अपने आप को बेहतर बना सकें। तो इन चीज़ों को कभी भी मेंटल हेल्थ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो लोग चले जाते हैं वो बाहर भी निकल आते हैं।
1: अच्छा किबला, मुश्किलात का हल ढूंढने के लिए कुछ जो है, जैसे आपने कहा कि वो रूहानी तरफ जाते हैं लोग, तावीज़ वगैरह, तावीज़ गंडे और इस तरह की चीज़ें, तो इसमें जो पेशा वराना हेल्प है, जो जो मदद है, उसका क्या इस्लाम कहता है उसके बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, कि किस किस किस हद तक आप तावीज़ की तरफ जाएं और किस हद तक जो है आप एक साइकाट्रिस्ट या प्रोफेशनल से कंसल्ट करें जो आपकी मदद कर सके?
0: हाँ, देखिए हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई माहिर होता है और उस माहिर के तरफ रुजू करना बहुत ज़रूरी है। हत्ता हर आलिम भी आपको स्पिरिचुअली मदद नहीं कर सकता, वो उनका खुद एक बहुत बड़े लेवल पे होना ज़रूरी होता है कि
1: क्या
0: वो
1: उलमा की, सॉरी मैं कता कलामी, माफ, क्या उलमा की

0: ट्रेनिंग होती है इस हवाले से?
1: नहीं नहीं होती, आमतौर से नहीं होती। तो कुछ लोग खुद जाके ट्रेनिंग लेते हैं और सिर्फ उन्हीं उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए कि जो उसकी ट्रेनिंग लिए हुए हैं और वो जो माहिर हैं, नंबर एक। नंबर दो, जैसे हर डॉक्टर भी डिप्रेशन को नहीं डील कर सकता,
0: सही।
1: तो अब आपको जब आपको साइकाट्रिस्ट की तरफ जाना पड़ता है, बाज़ का साइकोलॉजिस्ट आपके साथ बैठते हैं, वो आपको पूरा स्टडी करते हैं। इसी तरह से वो उलमा जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो काउंसलिंग कर रहे हैं उलमा और उनको काउंसलिंग नहीं आती, उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं की, तो और वो
0: बाकायदा तौर पे एक मजमून है उसकी, एकेडमिक स्टडी है।
1: अब आप मिसाल के तौर पे कहेंगे जी नहीं मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मैंने तो कुरान पढ़ रखा है, मैंने हदीस पढ़ रखी है, मैंने फिक्र पढ़ रखा है, तो आपने बाकायदा काउंसलिंग की, बाकायदा कुरान से आयात को देखा या किसी ने आपको ट्रेनिंग दी है हदीस की? बहुत से उलमा इस बात को मेरी बुरा मनाएंगे, लेकिन बहुत से उलमा मैंने खुद देखा है काउंसलिंग कर रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं काउंसलिंग। तो इसी तरह से यानी अच्छा, फिर मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनसे बात की है, मैंने कहा कि आप मेडिकेशन छोड़ दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फिर मेरा गुस्से का जो है लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता और मेरे जो है वो जहनी तवाज़ुन मेरा वो सही नहीं रहता अगर मैं मेडिकेशन छोड़ देता हूँ। तो यानी मेडिकेशन भी बाज़ जगहों पे नेसेसरी हो जाती है। यानी क्या मतलब होता है कि आपको जो दवा ले रहे हैं जो बाकायदा एंटी डिप्रेशन होती है, अच्छा उसमें क्या होता है कि मैं उसको इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता हूँ कि उसमें लोग सोते रहते हैं, लंबा बहुत सोते हैं, फिर उसमें क्या होता है स्लो डाउन हो जाते हैं, तो लेकिन उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि फिर उनको जुनून चढ़ने लगता है या वो जिन उससे किस उससे गुजरे हैं मरहले से गुजरे हैं जिसकी वजह से उनको वो डिप्रेशन होता है, अगर वो मेडिकेशन छोड़ देते हैं तो फिर वो कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी मेडिकेशन फौरन ना छुड़वाएं और बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के जो आलिम भी उनकी मदद कर रहा है वो भी मुदाखलत ना करे जब तक कि खुद डॉक्टर से ना पूछ ले, डॉक्टर का ना वो करे। तो अब मिसाल के तौर पे मैं किसी के पेशेंट का नाम नहीं लेना जाए, तो यानी पूरा एक कह लें कि डब्बा था दवाइयों का जो दिया गया, तो यानी कई मरतबा खुद डॉक्टर्स भी, सारे डॉक्टर्स भी इतने माहिर नहीं होते कि वो उसको देख पाएं कि ये किस उससे गुजर रहे हैं। समझना बहुत ज़रूरी था पेशेंट का कि वो किस उससे गुजर रहा है। एक पेशेंट था तो वो उसने कहीं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुतालिक गुफ्तगू की कहीं स्कूल में, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा जो, तो उसको क्या किया गया, उन्होंने कहा कि भी ये टेररिस्ट बन रहा है, ये जंग की बातें कर रहा है। तो वो बच्चा नॉर्मल बच्चा था, सिर्फ ज़हूर की बातें कर रहा था, उसको उन्होंने रिपोर्ट किया और वो साइकोलॉजिस्ट सारे बैठ के उसके इंटरव्यूज़ लेने लगे और उसको इतना ज़्यादा उन्होंने उसके इंटरव्यूज़ लिए कि वो वाकई डिप्रेशन में चला गया और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और फिर जब मुझे बुलाया गया तो फिर वहाँ पर जाने के बाद मैंने उनको सारा समझाया कि ये दहशतगर्द नहीं है बच्चा, बल्कि ये बच्चा जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनके साथ, तो फिर डॉक्टरों को समझ में आया क्योंकि उनको ओरिजिनली समझ में ही नहीं आ रहा था ये किस ये क्या बातें कर रहा है। तो यानी बच्चा नॉर्मल था, उन्होंने उसको डिप्रेशन का शिकार कर दिया। किसने? सोशल सर्विसेज के लोगों ने, पुलिस के इंटरव्यूज और खुद डॉक्टर्स ने उसको इतना ज़्यादा सवाल जवाब के अंदर के भी दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, उन्होंने कर दिया। आखिर में उसका इलाज कर दिया, लेकिन वो कई महीने तक उनके उस गलत रवैये और इंटरव्यूज और उस गलत मुआलजे की वजह से वो बच्चा उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी। तो इत्तफाकन उसके वालदैन ने कहा कि एक दफ़ा आप आएँ और आके मिलें, जब मैं वहाँ पे गया तो बहरहाल मैं तस्वीर में नहीं जाना चाहता, तो वो ठीक हो गया आखिर में। मेरा पॉइंट ये है कि वो खुद डॉक्टर्स भी तशखीस नहीं दे पाए, इसी जब डॉक्टर जो माहिर हैं वो तशखीस नहीं दे पा रहे तो लाजमी नहीं है कि हर आलिम भी तशखीस दे ले। तो हर आलिम को ये बुरा नहीं मनाना चाहिए, जो हमें चीज़ नहीं आती हमें नहीं आती,
0: लेकिन जो रूहानी इलाज है उसकी हकीकत तो है ना।
1: रूहानी इलाज है, कुरान करीम है, इसी तरह से आप दुआ पढ़ेंगे, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा सूरह फातिहा का आप किसी के ऊपर भी दम करेंगे 70 दफ़ा पढ़ें, उनको पाबंदी से कहते हैं आप पढ़ने लग जाएं, आजकल कुछ ही मिसाल के तौर पर 70 दफ़ा डेली पढ़ें, अपने ऊपर खुद ही दम करें, सूरह फातिहा 70 दफ़ा नहीं पढ़ सकते, 40 दफ़ा पढ़ लें, 21 दफ़ा 14 दफ़ा पढ़ें डेली, और वो असर या हय्यो या कय्यूम 164, यानी ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें अज़कार हैं, अल्लाह के नाम हैं और कुरान करीम हैं, आप पढ़ें उसके असरात होते हैं, 100% मैं मुतमइन हूँ कि होते हैं। और अगर हम ये ना माने तो इसका मतलब है कि यानी हम कुरान की रूहानी ताकत को नहीं मानते, हम मासूमीन अलैहिस्सलाम की उस रूहानी ताकत को नहीं मान रहे, हम उसका इनकार कर रहे हैं। ये तो एक मादी आदमी इनकार करे तो समझ में आता है, एक मानवी इंसान तो इसका, अगर एक मोमिन है तो उसको इनकार नहीं कर सकता। ये जो जगह जगह आ गया, अगर मौला अली साहब की हदीस है कि अगर सूरह फातिहा किसी चीज़ की इलाज ना कर सके तो फिर उसका कोई भी इलाज नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि इनमें इतनी ताकत है रूहानी लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि नहीं ठीक है मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं दवा नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ दुआ पढ़ लूंगा। नहीं, अगर डॉक्टर आपसे कह रहा है कि लें तो ठीक है, आप साथ में दुआ पढ़ते रहें, उस दुआ की वजह से आपको जल्दी शिफा मिल जाएगी। तो बाज़ औक़ात लोग सिर्फ और सिर्फ यानी दुआ से ठीक नहीं हो रहे होते, इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये ना करें कि आप जो हैं वो डॉक्टर की तरफ ना जाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम से बड़ा तो कोई डॉक्टर नहीं था, जब कूफे वाले उनके लिए तबीब ले आए और कहा कि या अली ज़रबत लगी है, मौला अली ने मना नहीं किया। हमारे उलमा कहते हैं कि मौला अली ने अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इसलिए मना नहीं किया ताकि मेरे मानने वाले ये ना कहें जब मौला ने डॉक्टर से इलाज नहीं कराया था तो मैं क्यों इलाज करूँ। मौला को पता था मेरी से शहादत हो जाएगी, फिर भी कहा कि तबीब को बुला लो। तबीब ने देखा जख्म को और उसने हसन मिश्रा से यही कहा कि जो जहर दिया गया है तलवार के अंदर अगर पूरे कूफे को दे दिया जाता तो सारे कूफे वाले मर जाते, इतना जहर था। वो तो शेर खुदा थे तो दो दिन उसी में तड़पते रहे और बर्दाश्त की, उस ताकत थी। तो तीसरे दिन आपकी शहादत हुई, 19वीं को ज़रबत लगी और 21वीं को शहादत हुई, और आपने अपने सारे वसीयत की सारा कुछ बताया, क्या कुछ करना है, कैसे करना है, क्या मौला हसन के मुतालिक वसीयत की कि ये। तो यानी मेरा पॉइंट ये है कि मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने तबीब को मना नहीं किया कि तू कौन है, मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इल्म लदुन्नी के मालिक है, सब कुछ जानते थे, लेकिन मौला ने उसको मना नहीं, ताकि कोई शिया ये ना कहे कि हम तो इलाज नहीं करवाएंगे क्योंकि मौला ने तबीब को दिखाने से मना कर, डॉक्टर को दिखाने से मना कर दिया। तबीब यानी डॉक्टर आज, अब ये एलोपैथी के उस जमाने में और तरह के थे, हर्बल मेडिसिन के थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि नहीं, हकीम हो या किसी भी तरह का कोई जो उसको मालिज को दिखाना, इलाज मेंटल अपना इलाज भी कराना, ये मायूब ना समझा जाए इसको। जैसे इंसान की जिस्म बीमार हो जाता है वैसे रूह बीमार हो जाती है, वैसे ही जहन बीमार हो जाता है। रूहानी इलाज अलग हैं, जहनी अलग, ये जिस्मानी अलग। तो इन सब चीज़ों के अलग अलग इलाज मालिज हैं,
0: अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं,
1: अलग अलग माहरीन हैं, उन्हीं माहरीन को दिखाना बहुत ज़रूरी है।
0: अच्छा किबला, आप हमारी कम्युनिटीज़ के हवाले से क्या कहेंगे कि उनको कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन सी चीज़ें इदारों के तौर पे या मसाजिद के तौर पे मुहैया करने की ज़रूरत है ताकि इस मसले का कोई मौसर जो है वो हल तलाश किया जा सके। शायद गालिब का शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, यानी कोई। तो क्या इस बारे में हम अमूमी तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि वो कोई इमाम या
1: मैं यानी बहुत अहम है। आपने दोबारा एक पोस्ट की तरफ इशारा किया। देखिए पहली बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जैसे एक डॉक्टर तशखीस देता है, और पुराने जमाने में होते थे नब्बाज हकीम, नब्स पकड़ के बता देते थे कि इसको ये बीमारी है और उसका इलाज बताते थे। अब नब्बाज हकीम नहीं रहे, ये होंगे तो बहुत कम होंगे। इसी तरह से हर डॉक्टर के अंदर नहीं होता, इसी तरह से हमारे कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज होनी चाहिए कि जहाँ पे एक खातून अपने शोहर से बेइंतहा अज़ियत से गुजर रही है, मैरिटल यानी इश्यूज हैं
0: जी,
1: वो डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको वैसे ही इलाज होना चाहिए। एक बच्चा वालदैन के अदम तवज्जुही की वजह से या गुरबत की वजह से या जिस वजह से भी डिप्रेशन का शिकार है उसका वैसे, तो अब प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि मसाजिद या इमामबरगाहों के साथ साथ वहाँ पर वो प्रोफेशनल सर्विसज भी मुहैया की जाए, फराहम की जाए, और मुख्तलिफ माहरीन वहाँ बैठे और हफ्ते में एक दिन या महीने में एक मरतबा वहीं पर डॉक्टर्स को बुलाया जाए, माहिर नफ्सियात को बुलाया जाए, मुख्तलिफ जो हैं जो जो इलाज जिनको चाहिए। वालदैन बुढ़ापे में बच्चों के उस जुल्म और ज्यादती की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, औलाद या मियाँ बीवी या मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के जो किसी न किसी वजह से गुजर रहे हैं। और अभी तो खुद पाकिस्तान में उन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत से लोग, जैसे अमेरिका के अंदर कहते हैं कि 1/4 आबादी जो है,
0: जी जी जी, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिस्टिक्स है कि 1 in 4 पीपल आर इंपैक्टेड बाय मेंटल हेल्थ इश्यूज।
1: अच्छा, यानी जब उनके ऊपर असर हो रहा है, इंपैक्टेड है, यानी कि मतलब मुतासिर है उस किसी ना किसी इशू से, तो अब 1 in 4। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि यानी 1 in 4 का मतलब ये नहीं होता कि ये सभी सुसाइडल हैं, खुदकुशी कर लेंगे, या इनको एंटी डिप्रेशन चाहिए, या इनको दवा चाहिए, या अस्पताल में एडमिट होना है। इसका मतलब ये होता है कि कोई लो एंड पे है, कोई हाई एंड पे है, यानी कोई बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है उस डिप्रेशन के, और कोई बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ये नहीं होता कि सब बराबर ही हैं, सब एक जैसे ही हैं। मिसाल के तौर पे किसी की बीमारी जिस्मानी बीमारियां भी किसी की बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में होती है, किसी की बहुत एडवांस हो चुकी होती है बीमारी, इसका इलाज नहीं हो। तो अब हम सब ये कहना कि ये कैसे हो सकता है कि 1/4, यानी हर चौथा आदमी, एक घर के अंदर भी अगर 10 लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब है 2 अफराद जहनी मरीज। तो भाई कोई ना कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, और बाज़ का तो हमारे ही जुल्म ज़्यादती की वजह से गुजर रहे होते हैं उस मेंटल हेल्थ से। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज है।

0: तमाम चीज़, ये आपको कुव्वत इरादी देती है, आपकी विल पावर को मजबूत करती है, आपकी यानी नफ्सियाती जिस्मानी रूहानी हर चीज़ में मदद करती है। और एक हदीस में है कि कोई भी पाबंदी से आयतल कुर्सी को नहीं पढ़ सकता सिवाय उसके कि जो जन्नती मोमिन हो। तो ये बहुत मददगार साबित होगी आयतल कुर्सी। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी हैं उसके अंदर ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है।
1: क़िबला बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका वक्त लिया और ये बहुत एक अहम मौजू था और इंशाल्लाह हमारे सामईन इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामईन कराम, आज की ये पॉडकास्ट एक हसास मौजू यानी जहनी सेहत और मेंटल हेल्थ के हवाले से है। तो इस पॉडकास्ट के दौरान अगर आप ये महसूस करें कि आपको फौरी मदद की ज़रूरत है तो हम आपको ये मशवरा देंगे कि आप अपने मकामी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या अगर कोई ख़तरे की बात है तो फौरी तौर पे पुलिस से राबता करें। शुक्रिया।